तू मेरे कम लग जा, मैं तेरे कम लग जाना। मैनू तू अपना कम दे दे, मेरा कम तू ले। संसार च ऐसा चल जाता, एक दूसरे दे काम आना, जिस काम दी जिदी जिन्नी समर्था होवे। बड़े पुराने समयां तो बंदा काम दा लैण देण करदा रहे। जेड़ा काम मैं नहीं कर सकदा, जेड़ा कर सकदा उहनू जाके बेनती करा, तू ये कर दे, इहदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वह मैनू दस। एक दूजे दे काम आ सकी। संसार च भी ऐसा वरते है, पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा कीता है कि मेरा काम कर सकेगा, ओदी समर्था थोड़ी होने करके कई बार निराशा का मूंह भी वेखना पिया होगा। महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर काम आउन दी, एक दूजे का काम करन दी सांझ पाउनी है, तू वाहगुरू नाल पा के वेख। मालिक तू जो चाहे कर सकना है, तेरी समर्था महान है, करता पुरख जो है सब कुछ कर सकना है, ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैथों कुछ भी नहीं हो सकता। जब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा, अरदास तो हो सकती है। और सच्ची गल जानना, अरदास च खड़े हो जाना ही रब दा काम है। ओदे काम लगन दा मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए, ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे विच। और जिसले साडे हाथ जुड़ जाण, मस्तक न्यों जाए, इहदे दो अर्थ हुंदे ने। हाथ जुड़ जाण दा मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना, इन्हां हाथां ने कुछ नहीं कर सकना, इन्हां हाथां तो होना कुछ नहीं, यह हाथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने, इन्हां हाथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन। आप करता पुरख हो, इन्हां हाथां तो कुछ नहीं होना, यह हाथ बज गए, यह हाथ तेरे सामने जुड़ गए, इन्हां तो कुछ नहीं होना। एक तो दोवें हाथ बन के सत्कार हुंदा है ना, किसी दूसरे का अभिवादन करना हो, आदर करना हो, भी हाथ बनने। लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हाथ बनने का मतलब यह भी हुंदा है कि इन्हां हाथां तो कुछ नहीं होना, बल्कि जिसले मत्था टेक देने हैं, इहदे पिछे भी दो गोज भाव ने। एक तो यह हुंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैन आया, लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने आ सी, मत्था टेकने आ पातशाह, इन्हां हाथों तो होना कुछ नहीं, इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जाना, मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता, मेरे सोचने च बड़िया भुलां ने, मेरी थां सोचो भी तुसी, मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौंत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी, ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो। मैं तुहाडी अरदास जुड़िया होवां, अरदास अर्ज दाश्त बेनती कर रहा हो, अर्ज कर रहा हो, मैं केवल अरदास जुड़िया होवां। एक दे जुड़ जाए ना बंदा, साहिबा ने विश्वास दृढ़ कराया, बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। ये वखरी गल है, मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है, जुड़ना ही औखा है, अरदास जुड़ जाना ही औखा है, नहीं जुड़े रहिंदा ते इहदे वास्ते भी अरदास करिए, बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए, तू मैनू अपनी अरदास जोड़ दे, अपनी भगती नाल मेरे लिए भी एकाग्र करन दी समर्था मैनू बख्श, फिर मैं अरदास च लगा होवांगा, हाथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा, भगती च लगा होवांगा। प्रभु दा होर कोई काम साथों थोड़िया नहीं पिया, वाहिगुरु दा कोई काम साडे गोचरा नहीं, प्रभु केवल प्यार चाहुंदा साडे कोल, सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा। ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए, अरदास करनी आ जावे ना, फिर की हुंदा है, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। एक तां हुंदा ना काम हो जाना, काम कर लेना, काम नबेड़ लेना, ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना, पहला तां करन तों पहला ही थड़कदा हुंदा है, घबराया हुंदा है, डगमगाउंदा है, ते जे किते काम हो जाए हंब के बह जांदा है, पसीने पूंजदा है, सजना मित्रां नूं कहिंदा है शुक्र करना काम निबड़ गया, बंदा केवल नबेड़ सकदा है। लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं, सतगुरु कारज सवारदा है। वड्डी वड्याई अचरज सोभा, उस कारज विच शोभा हुंदी, मान हुंदा है, सत्कार हुंदा, उस कारज दी वड्डी वड्याई हुंदी,
कार्ज आया रासे नानक कौ गुर पूरा भेटियो सगले दुख बिनासे जदो सतगुरु कार्ज करना आ जावे उसले कार्जा च सोभा हुंदी ते अरदास करन वाले दा मुख उजला हुंदा ये गल वखरी है कि अरदास करन वाला बंदा कार्ज दी संपूर्णता तो बाद ए नहीं कहिंदा मैं कम नबेड़ दे बल्कि

तेरा था भी सोना, तेरा रूप भी सोना, तेरे भगत भी सोने। सुंदर स्वामी धाम मालक दा दर सोना है। एक गल दा ख्याल रखना, मालक दा दर केड़ा है? सो दर के हा, सो कर के हा, जित दर वसे कवन दर कही है, दरा भीतर दर कवन लहे। ओ केड़ा दर है जिथे भी साध जन बैठ के उन्हें चेते कर देने, उथे ही दर कवन लहे।

ठाकुर के चरण तोय तोय पीवा, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा।

चरण कमल गुर के जपतर हर जप हो जीवा, चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, चरण पखार करम गुर सेवा बार जाओ लख बरिया, जय प्रसाद ए पौजल तरिया जन्ना निक पैसलिया।

हर हर चरण दे और धारे, हर हर चरण दे और धारे, शिव स्वामी सदगुर अपना काज सब हमारे, बंदार पूजा परमेश्वर हर कीर्त तत् विचारे, पुनदान पूजा परमेश्वर हर कीर्त।

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जिहड़े बोल बोल के मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा भरिया। तकना के परमात्मा रूप कैसे

कुलवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है कि बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है, भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला होवे, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिए ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

तास काती अकृत कन में कोई ना रखन, विशास काती अकृत कन, विशास काती किसनु कहिंदे नी, जेड़ा किसे नु प्यार विच ले आके

इस संसार ते कोई प्राणी एक दूसरे दा कोई एक काज सवार सकदा है, कोई दो, कोई तीन, कोई दस, कोई सौ, मगर सारे कार्य सवारन वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां जो समर्थ है, जो मेरे सारे कार्य

उस वेले वो अकाल पुरख किसे ना किसे ने इस संसार ते भेजता। कलयुग विच जद जुलम और पापा दी अत हुई धरती ने पुकार की थी ता उस वेले उस अकाल पुरख ने सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे बठाया इस संसार विच तन गुरु नानक साहब प्रगट हुए और सब तो वड़ा काम ए कीता चार वर्ण खत्री ब्राह्मण सूद वैस चारा ने एक जगह इकट्ठिया कीता और ए उपदेश कीता ए जाता पाता इंसान दिया बनाईया हैं सानू सारियों नू बनान वाला एक परमेश्वर है। आओ फिर एक जगह बह के उसका सिमरन करिए। तन गुरु नानक साहब का अवतार होया देवी देवतियां अपछरा खुशी दे गीत गाए। आओ फिर इस खुशी दे मौके आपां भी तन गुरु नानक साहब की पवित्र मिठी याद विच ए शब्द गा के रसना पवित्र करी।

पैगंबर उन्हां कोल दुनिया जांदी है, पर गुरु नानक सच्चा पातशाह आप लोगां कोल जांदे रहे। बाबा काशी गए, बनारस गए, हरिद्वार गए, गया जी गए। क्यों गए? भई लोगां दा तीर्थां ते इकट्ठ हुंदा सी ते बाबा जी उत्थे अपने विचार सुनांदे सन, लोगां नूं सिद्धे मार्ग ते लांदे सन। बटाले दे लागे बिल्कुल नजदीक, क्योंकि बटाले विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे सौरा परिवार सी, ते लागे अचल बटाला है। ओ सिद्धां दा बहुत वड्डा गढ़, शिवरात्रि दा मेला लगा होया सी, ते गुरु नानक ने सुनहरी मौका तकिया, कहन लगे मर्दानिया चल। गरीब नवाज पातशाह सत बचन, भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते ने,

नाल ओ जेड़े लोटे वेच लोग पैसे पा रहे सन ओ लुका दिता। भाई साहब भाई गुरदास ने बड़ी प्यारी बात कही। भाई साहब कहंदे ने

जिस वेले भगतिया ने तकिया भी जिदे विच लोक माया पा रहे ने ओ लोटा किधर चला गया ते भाई साहब कहंदे ने ओ भगतिया नू ओ भगत पाउणी भुल गई ना उताल रहा ना उराग रहा।

खादी खुण सुजुगी सिरा। जिस वेले बंदे नू अपनी हार होंदी दिस पवे ना, ए आम बात है, फिर वो झगड़े ते उतर आंदा, और तां पेश जांदी कोई नहीं। जोगियां ने गुरु नानक बाबा नाल बहस करनी शुरू कर दित्ती। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे ने, कैसी बात है,

पता लगा के वड्डा पीर आया, एदे अगे साडी दाल नहीं गलनी। ते उन्होंने अपने एक सेवक नू, अपने चेले नू एक दुध दा छन्ना भर के भेजिया, जिदा मतलब सी भी पीरीपुर मुल्तान इत्थे तेरी लोड़ ही नहीं, इत्थे अगे पीरां नाल भरिया पिया तेरी की लोड़ है।

ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸਮਝੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਭੌਂਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਭ ਕੁੱਤਾ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਲਕ ਪਲਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭੀਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਆਪਾਂ ਟੂ ਮਾਰੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਗਲਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿਨ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਹਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਆਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਲਕੇ ਭੌਂਕੇ ਸਦਾ ਬਿਆਲ, ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੰਗਲੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਚੋਂ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਬਾਸ ਚੰਗਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਪੀਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਾਰ ਲਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਸੀ ਕੌਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸਭਿਅ ਲੋਕ, ਸਭਿਅਤਾ ਰਹਿਤ ਸਭਿਅਤਾਹੀਣ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਮਾਰਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਨਿਓਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਭ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਛੁਰਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤੀਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਰਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਏ ਬੁਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਦਾ ਛੁਰਾ ਮੈਂ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਹਰਾਮ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਜੇ ਇਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮੁਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵੀ ਬਾਹ ਫੜਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਮੀ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੱਕ ਪਰਾਏ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਰ ਖੋਰਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ।
मैं पत की पंध मैनू अपनी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं ना करनी की कार मेरे अंदर आचरण की रहनी की कोई लकीर नहीं कोई हद नहीं तेरा एक नाम तारे संसार एक आसरा है कि इस भयानकता तो अपने आप तो लगते डर वाली अवस्था तो इस संसार तो तेरा नाम मैनू बचा सकता ऐसे आसरे मैं यह आस एहो आधार आस ला के बैठा एक नाम दे आसरे शायद मेरा जीवन बदल जा मुख निंदा आखा दिन रात मैं लोगों के औगण कढ़ के यह सच करके जानना जिन्ना चिर बंदा दूजिया के औगण कढ़ता रहे अपने औगणा ते निगाह ही नहीं पई ते जिन्ना चिर अपने औगणा ते निगाह ना पवे बंदा ठीक किवें होवेगा। धन गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह के पावन दरबार च आप जानते हो साहबां दे पास बहुत वड्डा चिकित्सालय सी दवाखाना सी लगभग उस वेले पसरिया मोटिया मोटिया सब बीमारियां दा इलाज महाराज सच्चे पातशाह दी निगरानी हेठ होया करदा सी बड़े बड़े तकड़े सियाने हकीम वैद महाराज ने सेवा च लाए हुए सन ते हर तरह की जड़ी बूटी दवाई जो उस वेले मिल सकण वाली चीज सी वरती जा सकण वाली चीज सी महाराज ने अपने दवाखाने कच कीती सी। इथों तक भी दस्या गया है एक बार दिल्ली दरबार विच भी एक बहुत वड्डे आकार की हरण की लोड़ पै गई सी हकीमां ने कह दिता ते महाराज के दवाखाने बिना होर किधरों नहीं सी मिलना। वो एक प्रेमी का मंजा चुक के लियाए घर दे बंदे लिया के वह मंजा रखिया वह कहिंदा मैनू महाराज को लै चलो मरीज जो है रोगी कहिंदा मैनू महाराज के बूहे ते लै चलो वह कह लगे तैनू दवाखाने विच हकीमां ते वैदां दे हवाले करना है महाराज के दर्शन तू तगड़ा होके कर ली महाराज इतने भी आते ने दर्शन बख्शते ने सतगुरु पातशाह उन्हां रोगियों नू आके नाम जपण निरंकार नाल जुड़न का उपदेश भी नाल नाल देंदे रहिंदे सी दवा दारू भी चलता रहे कहिंदा नहीं मैनू हुणे लै चलो महाराज एक बार मैनू वेख लै सियाणियां ने बहुत किया तैनू वैदा ने वेखना हकीमां ने वेखना महाराज दे दर्शन करने ने नहीं महाराज मैनू वेखण जिद कर बैठा रोगी की जिद बड़ी हुंदी उन्हें क्या चलो कोई नहीं लै चलो मंजा चुके महाराज के बूहे ते ले आए दरबार ने कहा सतगुरु आराम फरमा रहे ने विश्राम कर रहे ने हालांकि सतगुरु ने कहा विश्राम करना उन्होंने विश्राम विच भी भगती ते समाधि है उन्होंने इकले हो जाने विच भी समाधि है जपन है सिमरन है पर उपकार की भावना के कुछ व्यवंता होनगियां पर नहीं उसने क्या विश्राम कर रहे ने यह कह लगा मैं इतने प्यार रहन दो जिस वेले वो बाहर निकल गए मैनू एक बार वेख लैन फिर मेरा दवा दारू शुरू करे आवाज अंदर भी पहुंच गई महाराज ने पूछा क्यों भाई की गल है दरबार ने दसिया महाराज रोगी आया वह कहता पहला महाराज मैं वेखन फिर मेरा इलाज शुरू करो महाराज पातशाह आप बाहर आ गए धन गुरु हर राय साहब बाहर आ गए जिस वेले साहिबां के दर्शन होए वह जिहड़ा पासा नहीं सी लै सकदा ना प्या प्या सज्जा खब्बा पासा नहीं सी मोड़ सकदा सारा शरीर गलिया पिया वैदा हकीमां ने जिसके बारे जवाब दे दिता होया महाराज नूं वेखदिया सार छेती नाल उठण दा जतन करन लगा साथियां ने क्या प्यार हो महाराज ने भी इशारा किया मगर उठ के बैठ गया मंजे ते उठ के थले उतरन लगा महाराज कहन लगे टिक जा की चाहुंदा है कि कहिंदा बस महाराज मैं ही चाहुंदा सां तुसीं मैनूं वेख लो साहिबां ने मुस्कुरा के उही गल कही भलिया लोका तैनू वेखणगे वैद हकीम दवाई देणगे तू ठीक हो जाएगा आ गए तो हुण तैनू ठीक करके तोरांगे साडे वेखण वाली कीड़ी गल है सिर नीवा करके कहन लगा महाराज वह मैनू बाहरों वेखणगे मलमा ला के ठीक करके तोर देणगे मेरे अंदर किन्ना कोड़ वरतिया जिहड़ा फुट के बाहर आ गया तां तुहानू ही दिसना वैदा हकीमां नूं कोई नहीं दिसना किस काम क्रोध ते गंध ने मेरे अंदरों मैनू रोगी कीता ते ओह रोग मेरे बाहर चमड़ी ते आ गए ने वो जिहड़े मेरे अंदर दे रोग ने वो वैदा ते हकीमां नूं नजर नहीं आउंदे साहिब जी वो तां तुसीं देख सकदे हो इस करके क्या पहला मैनू अंदरों ठीक करना शुरू करो बाहरों ठीक हो जावांगा ते ठीक है पर जे मैं अंदरों रोगी रह गया ते गल की साहिब हस पए कह लगे शाबाश जे तेरा अंदर ख्याल भी पै गया ना कि अंदर कुछ रोग है अंदर कुछ बुराई है अंदर कुछ खराबी है तो हुण तेरे ठीक होण दे दिन आ गए ये सच करके जानना जिस वेले मनुख दा अपने आप ते ध्यान ही पै जावे ना कि मेरे अंदर कुछ खराबी है धन गुरु नानक कहिंदे ने मैनू इज्जत का कोई ख्याल नहीं मैनू अपनी करनी का कोई ख्याल नहीं मैं पत की पंध न करनी की कार हो बिगड़े रूप रहा बिकरार बिगड़िया होया मेरा अंदर का रूप भयानक रूप
तेरा एक नाम तारे संसार मैं यह आस एह आधार मुख निंदा आखा दिन रात इस मूह नाल मैं लोगों की निंदा करदिया जिंदगी बिता रहा दिन रात लोगों दी बुराइयां कढ़िया पर घर जो ही नीच सनात मैं बड़ा नीच ते कमीना हाँ कि मैं लोगों के घर वेखना ध्यान देगा लोगों के घर वाल वेखना आम तौर पर बाणी विच इस सेंस च लिया गया है इस भाव च लिया गया है जेड़ा कोई स्त्री किसी के मर्द वाल वेखे या कोई मर्द किसी की स्त्री वाल वेखे लेकिन केवल शरीर तक की गल नहीं है एक कामी पुरुष अपने घर वाल ना वेखता होया किसी की इज्जत वाल वेखता है बहुत माड़ी गल एक स्त्री अपने पति की धर्म पत्नी ना रह के ईमानदार ना रह के किसी मर्द वाल मैली निगाह नाल वेखे इसनू पर घर जोना कहिंदे ने पराए घर वाल वेखना लेकिन साडे लोगों की निगाह इत्थे ही थोड़ा टिकी असी धन भी लोगों के घर का वेखने वड्याइया भी लोगों के घर दियां वेखने जो कुछ किसी के घर च नजर आता है उत्थे ही साडी लोभ की निगाह टिकी हर चीज से साडी निगाह मैली हुंदी चली जांदी साहब कहिंदे ने इस तरह मेरी निगाह लोगों के घर विच पै रही पर घर जो ही देखदा हां लोगों के घर विच वेखदा हां बड़ा नीच ते कमीना पण है काम क्रोध तन वसे चंडाल ये तुसी भी जानते हो कि आम तौर पर बंदा कातल ते खूनी उदों बनता है जदों ये लोभ दे वस होवे काम दे वस होवे क्रोध दे वस होवे ये खराबियां बंदे कोलों बहुत गुनाह करांदियां हैं साहब कहिंदे ने इन्हां चंडालां ने मेरे कोलों बड़ा नुकसान कराया अपना भी पराया भी इन्हां चंडालां ने मैनू नेक इंसान नहीं बन दिता नहीं रहन दिता तानक रूप रहा करतार हाही सुरत मलूकी वेस कई बार ऐसा भी होया कि वह तो लोग जिन्हों की गल महाराज ने जिक्र किया इतने वो लोग तो बाहरों भी गंदे रहते सफाई बाहरले जीवन की भी नहीं रखते बाहरों भी मर्यादा नहीं रखते पर कई बार ऐसा भी होया कि आम बंदियां ने बाहरों जे बहुत सोहना साधा वाला वेस धारण बना लिया संतां वाला वेस धारण कर लिया साहब कहिंदे ने ऐसा भी होया हाही सुरत दिमाग में आया है कि मैं लोगों को फसावा किस तरह लोग फसन किस तरह मेरी फाही में किवें आउण मैं लोगों को किस तरह अपने चुंगल च लै सकां मलूकी वेस बाहरों मेरा नेक इंसाना वाला साधा वाला फकीर वाला वेस है हौ ठगवाड़ा ठगी देस मैं ठग लोगों को ठगण ते लगा होया खरा सियाणा बहुता भार उंज तां लोकी मैनूं सियाणा समझदे ने मैं अपने आप च सियाणा बणदा वी बहुत हां मगर ठगी ते पाप दा भार मैं अपने सिर ते वधाई चलिया जा रहा तानक रूप रहा करतार मैं कीता ना जाता हराम खोर मालक तेरियां रहमतां ते बख्शिशां दा मैं शाकर ना होया शुकराना ना कीता किरत कण बन गया जेड़ा बंदा किसे दा लै के किसे दा खा के फिर उहदा वी बुरा चितवे उसनूं हराम खोर कह देने आप खा के हराम करन वाला या बिना कीते खान वाला बिना कुछ कीतियां दे खा के डकार मार जान वाला बंदा उसनू हराम खोर कहिंदे जेड़ा हलाल नहीं करता खादे होए जो कुछ उसनू प्राप्त है उहदा हक अदा नहीं करता साहब कहिंदे ने मैं तेरियां दातां दा शुकराना ना कर सकिया ना मैथों कुछ घाल होई ते ना मैं तेरियां बख्शिशां दा शुकराना कर सकिया बल्कि तैथों बेमुख होया रहा इस तों वड्डा हराम खोर होर की होवे मैं कीता ना जाता हराम खोर हूं क्या मुंह देसा दुष्ट चोर मैं तेरे बूहे ते तेरे दर ते उते आके की मुंह विखावांगा मेरे अंदर किन्नी दुष्टताई ते किन्ना चोरां वाली गंदी बिरती है मेरे अंदर पल रही नानक नीच कहे विचार तानक रूप रहा करतार मैं निमाना मैं नीच एक विचार दे रहा हां कि मैं चंगे रूप च नहीं रह रहा मैं कोई चंगा जीवन बतीत नहीं कर रहा धन गुरु नानक का यह शब्द साहबां दी यह बाणी सानू अपने अंदर झात पाउण वास्ते एक बहुत प्यारी रोशनी है ते मनुख नू जे अपने अंदर यह रोशनी मार के अपने गुनाहां ते ध्यान पाउण दा ख्याल आ जावे तां साहिब पातशाह

नानक जिन उपाय कहे संभाले समनहा जिन करते करना किया चिंता भी करनी तहा सो करता चिंता करे जिन उपाय जग तिस जोहारी स्वस्थ स

गड्डी लदी है पड़पड़ भरी है साथ पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डी था पड़िए जेते बरस बरस पड़िए जेते मास पड़िए जेती आ जा।

बाबा नामदेव जी नाम जपद्यां जपद्यां ऐसी बिरती आप दी ब्रह्म ज्ञानियां दी अवस्था प्राप्त हुई के ठाकरां दे इशनान करन लई जल परन गए ते मन विच ख्याल आया भई 42 लख जी जल में होते बीठल पैदा काहे करो। 42 लख जून जल विच है, 42 लख जून इस तरत आकाश ते है, हुन बीठल नू मैं वखरा किवें भोग लवावां। हे भगवान, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, जिथे किथे तू ही तू है, कोई दूसरा नजर ही नहीं आउंदा।

अंदर कौतक वरता रहे। ड्योड़ी च भाई प्राणा जी बैठे दर्शन करन नू चित कीता, उठे सुलाखां दे परले पासे निगाह गई, सारा दिन मगदी रही अग दी रोशनी विच वेखे, कुरला उठे साहबां दे शरीर ते पए हुए छाले, सिख कोलों प्यार विच बर्दाश्त नहीं होया, उन्हां सुलाखां नू सिखां नू फड़िया जोर दी झटका मारिया, साहबां ने नेत्र खोले मुस्कुरा के वेखिया। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह गुरमत सिखाउण वाले तू ही मुस्कुरा सकना है, गुरमत तो बारा केड़ा मुस्कुरा रहे। मुस्कुरा के तकिया, भाई पराणा की हो गया, पातशाह मैथों नहीं जरिया जांदा। ते साहब कहंदे ने वापर रहियां ने मेरे शरीर ते जरिया तैथों नहीं जांदा। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना, भाई गुरदास जी भाई प्राणा मालक दी रचना है, जो कर रहे हैं मेरे शरीर ते वापर रही है ते मैं सह रहे हैं। तेरे कोलों नहीं सहन, तेरे शरीर ते आ गई ते की करेगा बादशाह, मैनू तुसी आग्या दियो मैं तबाह कर दिया सारा कुछ, मैं फना कर दिया। साहब हस पे कहन लगे भाई प्राणा जिदन फना करना होगा जिन्हें रचिया आपे कर ले, तेनू फना करन दा फिक्र कित्थों पै गई, तू फना करन दियां ताकतां कित्थों आ गई तेरे विच। कहिंदा पातशाह तेरे चरणा विचों। ते साहब हस के कहंदे ने भाई पराणा जे मेरे चरणा चो तबाह करन दियां ताकतां तेरे कोल आईयां ने ते फिर मैं ही नहीं तबाह कर सकदा, मैं जे तोड़ना फोड़ना चाहवां मैं नहीं कर सकदा। नहीं भाई पराणा, आपां कुछ करता पुरख की रचना विच कुछ बना सकीए कुछ उसार सकीए ते गल वखरी है, तबाहियां दी गल आपां नहीं सोचनी, आपां तां उसारियां दी गल सोचनी। मन नूं टिकाणे रख, हौसले विच रहो, ओहदी रजा विच रहो। साहब उठे अपने आसन तो, उठे ते आके मोढे ते हथ रख दिता, सिखां विचों पार करके प्यारा जिहा हथ भाई पराणे दे मोढे ते रखिया। ओह जिहड़ी अंदर जप तप दी शक्ति उछाले मारन लग पई सी सारी दबा दित्ती, ठंड वरता दित्ती। आ गए बाहरों पैरुए, उन्हां ने आके भाई जी नूं बड़ा कुटिया बड़ा मारिया, पर मालिक दी बख्शिश कीती होई, धन गुरु अर्जन साहब दी बख्शिश कीती सहनशीलता सदका, फिर भाई पराणे ने हाए नहीं कीती, सी नहीं उचारी, वाहिगुरु वाहिगुरु जपदिया होया बेसुरती तक तां पहुंच गए, लेकिन हाए नहीं आखी, क्योंकि रजा च रहना आ गया। रजा च रहना आ जावे ना ते फिर हाए नहीं मुंहों निकलदी, शुक्र मुंहों निकलदा है।

इस संसार ते कोई प्राणी एक दूसरे दा कोई एक काज सवार सकदा है, कोई दो, कोई तीन, कोई दस, कोई सौ, मगर सारे कार्य सवारन वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवा जो समर्थ है,

दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख शक्तवार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन ताए वैद ना भोले दारू लाए। साहबा ने दुख गिने ने बंदे दे। बंदे नालो बंदा विछड़ जावे ते दुखी हो जाए, जिथे मोह बनिया हो प्यो पुत्र विछड़ जान, भरा भरा विछड़ जान, मां पुत्र विछड़ जान, मावां धियां विछड़ जान, दुख वापरदा। मगर साहब का इशारा होर पासे कर दे, कहिंदे ने वाहगुरु नाल विछड़िया होया बंदा किन्ना दुखी। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक नित दी भुख, राती सुते खा के दिने फेर खली। हर वेले मनुख दे अंदर नहीं उस भुख की गल जिहड़ी रोटी की लगती, एक होर भुख की गल बाबा जी कहिंदे ने जिहनूं तृष्णा कहिंदे आ, मिटन विच ही नहीं आउंदी। सब कुछ हुंदिया सुनिया भुख कायम है, खा पी के भुख कायम है, उस भुख ने बहुता दुखी कीता। रोटी की भुख बंदे ने जर ली होवेगी, लेकिन तृष्णा च बंदा बड़ा दुखी हो। एक दुख शक्तवार जमदूत, एक वड्डा दुख बंदे वास्ते मौत तो बाद की बनेगा, लेखा किवें देवांगे, सुरखरू किवें होवांगे। चौथी थां ते महाराज कहंदे ने एक दुख रोग लगे तन तहाए, या कदे कदे शरीर ते भी दुख आ जांदा। तू किथे किथे दवाई लावेगा, किस किस दुख दा दारू करेगा, पर जदों गुरु दी रहमत हो जावे ना सारे ही दुख दूर हो जांदे। दुख बिन से पूर्ण पई खाल, कदों जदों गुरु की बख्शिश हो जावे, रहमत हो जावे, सतगुरु दयाल हो जान, यह गल वखरी है सत्संगत। इस तो कुछ साहबा ने कहा ना, गुर पूरे जब भय दयाल, ऐसा मतलब नहीं समझना कि जदों कदे महाराज दयाल होणगे तां किते गल वापरेगी। सतगुरु सदा दयाल है भाई, गल इन्नी है कि उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते मैं कोई यतन कीता है कि नहीं, मैं निम्रता नाल उहदे चरणा ते मत्था टेकिया कि नहीं, मैं उहदी रहमत वास्ते झोली फैलाई है कि नहीं। जद भी मैं उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते निम्रता सहित झोली फैलाई, मत्था टेकिया है, रहमत अवश्य होई, और उस रहमत दे नाल मेरे दुख दूर होए ने। इन्हां नूं दुख किया है, ते इन्हां दुखां दे पिछे जो इन्हां दे कारण ने उन्हूं दोख भी किया है। दोख कहिंदे ने दोष नूं, गुनाह करिए ते दुख पल्ले पैंदा है। ते पावन बाणी च तोका हुंदी है ना, मृग मीन भृंग पतंग

सुगंधी दी तीबर इच्छा ने रोगी बना रखे पतंगे नू नेत्रां दी भुख ने अखां दी भुख ने रोशनी वेख के बावरा हो जांदा हाथी नू काम दा रोग है मगर महाराज तां कहिंदे ने बंदे दा की हाल होवेगा पंच दोख असाध जामे तांकी केत कास बंदे नू तां पंजे ही चंबड़े ने ए कन्ना तो भी कमला ए नासा तो भी कमला अखां तो भी कमला जीवा तो भी कमला इंद्रियां सारियां तो कमला काम तो भी कमला एदा की हाल होवेगा सतगुरु जिस दिन कृपा करदे ने ना उस दिन इन्हां दोषां तो बचाउंदे ने बंदा जिस दिन दोख तो बच जांदा है दोष तो बच जांदा है उस दिन दुख तो भी बच जांदा है क्योंकि दोष तो ही दोख तो ही दुख पैदा होंदा है दोष नहीं रहा दोख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा गुर पूरे जब पहे दयाल दुख बिन से पूरन पही कहार हुण सतगुरु ते रहमत कर दिती मैं की करा मैनू की करना चाहिए साहिबा ने साडे वल संकेत कीता कि हुण तू अपना फर्ज पछाण गुरु ने तैनू दोषां दे चिक्कड़ विचों कढ के दुखां तो बचाया तैनू की करना चाहिए ओ संकल्प महाराज ने बख्शे है पेख पेख जीवा दर्स तुम्हारा सतगुरु जुड़िया रवां तेरे नाल चरण कमल जाई बलिहारा तेरे चरना तो वारने बलिहारने जांदा रवां तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा अज तेथों विछड़ गए मुड़के दोष आ गए मुड़के दुख आ जाणगे तेरे बिना कौन है जो बचाई रखे दोषां तो ते दुखां तो साध संगत से उपरीत बन आई पूर्व कर्म लिखत तुर पाई ए भी तेरी रहमत जप हर हर नाम अचरज प्रताप भगती च लख के ऐसी सोहनी गल बनी है ऐसा आश्चर्य प्रभाव वाला काम होया प्रताप वाला काम होया कि जाल ना साके तीने ताप हुण आद ब्याद उपाद वापर नहीं सकदे हुण ता मेरे ते रहमत करो मेरे सतगुरु निमुख ना विसरे हर चरण तुम्हारे तुहाडे चरणा कमलां तो एक पल वास्ते भी ओझल ना होवां ओले ना होवां भुल ना जावां तुहानू नानक मांगे दान प्यारे मैं तां इही दान मंगदा निमुख ना विसरे हर चरण तुम्हारे बंदा एक चादर दी बुकल मारी तुरिया जा रहा सी सिखा ने वेखिया कहन लगे महाराज कोई सुइया जापदा है कोई खुफिया जापदा है जासूस लगदा है जेड़ा किले दे नेड़े लंघिया जांदा है मूंह सिर छुपा के तुरिया जांदा है बुकल कैसी मारी सू पुछे बंदा तू ऐसे बड़ी ठंड वापरन डई किवें बुकल मारी सू जरूर एदे कोल कोई गुझे हथियार होने ने और सू लैण वास्ते तदे अपने आप नू छुपा के ये अपने नेड़े तेरे फिरदा है महाराज कहन लगे फड़ लो सिखां ने जाके घेर लिया फड़ लिया रोंदा धोंदा कुरलाउंदा बाहां छुड़ाउंदा तरले मारदा गुरु के हाजिर कीता गया साहिब कलगीधर पातशाह कहन लगे कौन है तू मूंह नंगा करके कहन लगा पातशाह तुहाडी शोभा महिमा सुनी मैनू गरीब नू कोई नहीं जानदा मगर गरीब नवाज तुहानू सारे जानदे ने मैं भी जानदा जो कोई तुहाडे बारे सुने है मैं बेनती करांगा मैनू खिमा कर दिओ कौन है तू कहन लगा जी पठान पुत्र किवें आया सा इधर के महाराज एवें बिपता दा मारिया आ गया सिख कहन लगे महाराज आ चादर खुलाओ इहदी पुछो इहदी बुकल विच की है अखां नीवियां करके कहन लगा सच्चे पातशाह मैं बेनती करांगा मेरा परदा रहण दिओ हर कोई चाहुंदा मेरा परदा बनिया रहे जो कुछ मैं अंदरों हां जो कुछ मेरे अंदर है ढकिया रहे क्योंकि हर किसी बंदे कोल नंगा करन जोगा चंगा चंगा कुछ नहीं है जिन्हां कोल चंगा चंगा है वह परदा करन भी किस गल दा बल्कि वह तां इश्तिहारबाजियां कराउंदे ने किसे बड़े चंगे हैं जिन्हां कोल थोड़ा बहुत भी चंगा है बल्कि इत्थों तक जे को एक करे चंगियाई मन चित बहुत बफावे छोटी मोटी नेकी हो जावे ना संसार नू दसना चाहुंदा है लेकिन बदियां ते परदा पाई रखना चाहुंदा है कोई किसे नू नहीं दसदा सजना तो गहरे सजना नू इत्थों तक पति पत्नी एक दूजे नू अपनियां कमजोरियां तक नहीं दसदे कोई विरले हुंदे ने जिहड़े अंदरों बाहरों हुंदे ही शुद्ध ने परदे वाली गल ही कोई नहीं तरला मारन लगा कहन लगा साहिब जी मेरा परदा रहण दे साहिब मुस्कुरा पए

साहब जान देने का परदा की है, परे तो आप परदे ढकण वाले ने। इहदा यह परदा ला के उहदा दोई जानी परदा कजन ते आए ने। कहिंदे ने नहीं लाओ इहदा खेस, इहदी चादर ला दे। रोण लग पिया, सिखां ने एक नहीं सुनी, उन्होंने चादर ला दित्ती। उहदी बगल च निक्का जिहा मरीज जिहा कुत्ता पाया है, उहदी संगी ते उहने हथ दित्ता होया। कुत्ते दीआं अखां बाहर ने, जबान बाहर नूं आई, मर रिहा। छड़ दिता कुत्ता, थले डिग पिया। साहब कहन लगे कि यही तेरा परदा सी, सिर नीवा करके खलोता है। साहब कहन लगे क्यों, की गल है, बोलदा क्यों नहीं। कहन लगा महाराज कई दिनों दा भुखा सा, देसों परदेस आ गया सा किरत करन वास्ते। इत्थे बादशाहत ने ऐसी अफरा तफरी मचाई हुई है कि किसे गरीब नूं रोटी कित्थों मिलनी। इत्थे तां लुटेरा खा सकदा, डाकू खा सकदा, गरीब दी कोई जान नहीं। या तुहाडे वर्गे दे सकदे ने, खा सकदे ने, जिन्हां ने उस अफरा तफरी दा कोई असर नहीं लिया, जिहड़े उस अफरा तफरी नूं मिटाउण वास्ते तुले होए ने। तुहाडे लोकां दे लंगर चल सकदे ने पातशाह, मैं गरीब, उन्हां नूं फुरसत नहीं किसे गरीब वल वेखण दी, ते दूजे जिहड़े उन्हां दे सताए होए ने उन्हें नेड़े नहीं लगण देंदे। मैनूं मुसलमान पठान नूं रोटी खाद्या कई चिर हो गया, मंगणा मेरी शान दे खिलाफ है। कैसी प्यारी गल है, जिसले साखी पढ़ने हैं, पठान कहिंदा है मंगना पठान दी शान दे खिलाफ है। सिख वास्ते भी एवें, पावन बाणी कहिंदी है, लोक तिकार कहे मंगत जन, मांगत मान ना पाया। मंगण वाले दा कोई मान नहीं, तरकारा तां मिल सकदियां ने, मान नहीं मिल सकदा। इसे करके गुरु का सिख मंग के नहीं खादा, करके खांदा, मान नाल छकदा, तरकार नाल नहीं खाण नूं तैयार। कहिंदा जी पठान पुत्रा मंगण जोगा भी नहीं, भुखां दा मारिया लुटन जोगा भी तां नहीं, मेहनत मजदूरी भी कोई नहीं मिलती। कई दिनां दा भुखां दा मारिया, अज मैं ये फैसला कर रहा सी भी जो मिल गया खा लेना, ते मरियल जिहा कुत्ता मेरे काबू आ गया। मैं सोचदा सां कितें नुकरे बह के इसे नूं चब लवां, इसे नूं भुन के जिवें भी होवे इस नूं खा लवां, ते अपने पेट की अग बुझा लवां। साहब कहण लगे इहनूं लंगर छकाओ, सोहणे बस्तर पुआओ। कहन लगा महाराज मैं तुहाडा दुश्मन हो सकना, दोखी हो सकना, लंगर छका रहे हो तुहाडी बड़ी कृपा है, क्योंकि तुहाडे दर ते तां न्याय वापरदा है। साहब कहन लगे तू इत्थे ही रहेगा। कहन लगा महाराज सारे मैनू शक दी निगाह नाल वेखणगे। साहब कलगीधर पातशाह हस पए, कहन लगे नहीं, इत्थे भाई घनैये वर्गे बेअंत ने, जिहड़े किसे नूं दुश्मन नहीं समझदे, किसे नूं वैरी नहीं जानदे, तू इत्थे रहेगा। आम उन्हां समयां च टकियां विच रसीने मिलदे सन। साहिबां ने रुपया रोज़ दा ला दिता। कहन लगे इहनूं गुजरान मात्र रुपया रोज़ दा दिओ। कहन लगा साहिब जी किस गल दा, तुसीं इह रुपया रोज़ मैनूं किस गल दा बख्शदे। साहिब कहन लगे भुखां दा मारिआं, गरीबी दा मारिआं, देसों परदेस आया कमाउण वास्ते, तेरे बाल बच्चियां वास्ते, तेरी किरत मात्र, कि महाराज मैं करांगा की। साहिब कहन लगे जो तेरा जी करदा है, तैथों कुछ होवे, तेरा शरीर जरे ते कर लई, ना कीता जावे तां वी कोई डर नहीं। गद गद हो गया, गुरु कीआं रहमतां पा के फिर डेरा नहीं छड्डिया, गुरु का डर नहीं छड्डिया, सेवा च लग गया, इतनी सेवा कीती गुरु के सिखां दे नाल जूझदा ही शहीद हो गया, गुरु के चरण नहीं छड्डे। कई बारी सिखां ने कहा हुण तां तकड़ा हो गया, पैसे भी हो गए, हुण तां निकल जाए इत्थों, तेरी जात बिरादरी वालिआं ने, तेरे बंदिआं ने वेख लिया तैनूं काफिर कहणगे, तैनूं दोषी करार देणगे। उह कहिंदा नहीं, दोष निकल गए जीवन विचों, जिसने खुदा नाल जोड़े है, इन्ना परउपकार ते इन्नी समदृष्टि बख्शिश कीती है, जे उहने मेरे नाल वैर नहीं कमाया, उहदियां ने मेरे नाल वैर नहीं कमाया, ते मैं इहनूं छड्ड के होर किहदे कोल चला जावां, इहदे चरणां दे विच बाकी दी जिंदगी बतीत होवे। इह सच जानना इक पठान दी गल नहीं, साडे किन्ने ही दुख, उहदी इक भुख दा दुख महाराज ने दूर कीता ते हमेशा वास्ते विक गया गुरु चरणां तों। साडे किन्ने दुख सतगुरु दूर कर दे। गुरु के सिख दा की फर्ज बनदा है, उह सदा इह गल हिरदे च धारण करके रवे कि साहिब तेरे दर तों सरदारियां पाईआं ने, भुखां मिटियां ने, मान मिलिआ है, भरम मिटे ने, दूई मिटी है, हिरदे नूं शांति प्राप्त होई, बड़े सुख पाए ने, मेरे ते तेरी रहमत होवे ते होवे कि मैं तेरे नाल जुड़िया जुड़िया अपना जीवन सफला कर जा। आपां हुणे शब्द पढ़िया सी ना, डिगन डोला तऊ लो जो मन के भरमा, बंदा डिगदा डोलदा ते
ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਚ ਭਰਮ ਨੇ ਦੂਈ ਭਾਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਭਰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਜਾਣਤਾ ਤਬ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਗੁਰ ਕਾਟੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤਬ ਛੁਟਕੇ ਫੰਦਾ। ਜਬ ਲਗ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝਦਾ ਤਬ ਹੀ ਲੋ ਦੁਖੀਆ, ਗੁਰਮਿਲ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਿਆ ਤਬ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੀਆ।

एक होर शब्द विच अपनी जीवन दी ओ झाकी दर्शा रहे ने, जो कुछ उन्हां नाल बीतिया, जो कुछ उन्हां नाल कीता गया। कहिंदे हन एक वारी दा जिक्र है, मेरियां बाहां बन के लत्तां बन के गठड़ी दा रूप देख के, गठड़ी वंगर जिवें गठड़ी बद्दी हुंदी, मैनूं हाथी अगे सुटिया गया। पूजा बांध पिला कर डारियो, पर वाहेगुरु तेरा लख लख शुक्र है, हाथी नू उस गठड़ी विचों पता नहीं कैसा अक्ष पिया, की दिसिया, हाथी चीका मारदा भज गया।

कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही, कहंदे ने हाथी तां नमस्कारां पिया करदा, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, जेड़ा राम मेरे च बैठा होया ओही हाथी च बैठा होया। पंकज दे बसे भगवान, कहंदे ने मैं हैरान हां पर मैनू सजा क्यों मिल रही, ना मैं चोरी कीती, ना मैं डाका मारिया, ना मैं कोई कतल कीता, कोई गलत काम ही नहीं कीता, सजा किस गल दी। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोच कुंचर को दीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले।

तेरे गुण इतने हैं, तेरे गुणा नो तू आप ही जानते हैं, तेरे गुणा दा कोई अंत नहीं, ते मेरे अवगुणा दा भी कोई अंत नहीं। जिन्ना समुद्र विच पानी है, इतने साड़ी विच अवगुण हैं। कृपा कर

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शुकराने का शब्द है सुलही ते नारायण राख। समय का बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगती के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे। गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन, इस दे मन विच बड़ा दुख सी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है। अपने सीपा सलार नूं हुकम दिता भई तू कश्मीर नूं जा रहे हैं जंग करन लई, ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है, उस नूं भी सोधदा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु। ते जदों ये पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं लग्या तां सिखां ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है, प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता दोए मानक पहुंचावो, तृतीय मता किश करो उपाया, मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। हजूर अगे बेनती कीती गई कि महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नूं पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो, कुछ उपा जरूर करो। ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुली समेत स्वाह हो गया। इस शुकराने वजों हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ